0: निदाय भागो दुर्वाहु गप्रियाय भागो मुड़िया भागनाय भागो मगप्रियाय भागो पार्वदेव
1: वाम कार्तिकेय दाय विपहे दंड हस्ताय देवहि कन्नस्कंद प्रजोदयादेव